0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामान चंद ही लम्हे बाद अब हम आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवो टेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की

0: सात अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said that despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence, with increasing public participation. He said democracy has remained an integral part of the country's work culture and thought process. The Lok Sabha speaker said active and inclusive participation in democracy is essential for shaping the nation's future.

घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव

107.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार के साथ करते हैं। स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले दो चीजों से मुक्त होना पड़ता है, बुरे भविष्य का डर और दुखद अतीत की यादें। हम में से कई लोग बीते हुए कल की गलतियों या दुखों को ढोते रहते हैं और साथ ही आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का सबसे सुंदर सच ये है कि अतीत एक सीख है, सजा नहीं, और भविष्य एक संभावना है, भय नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर, एक नई ऊर्जा, नई सोच, ढेर सारी खुशियाँ और भीगे हुए मौसम के साथ।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म थी धरती। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं की जो मजबूत नींव दिखाई देती है, उसकी शुरुआत किसने की होगी? चलिए आज आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने राजमहलों की सुविधाएं छोड़कर देश के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की।

कल्पना कीजिए, नया नया आजाद हुआ भारत, सीमित संसाधन, बीमारियों का प्रकोप और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। ऐसे समय में किसी को आगे आकर यह कहना था कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है, और यह जिम्मेदारी निभाई राजकुमारी अमृत कौर ने। उन्होंने मलेरिया और क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयास किए। देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके निर्माण के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर का। उन्होंने अथक प्रयास किए, इस संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ताकि भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं था, वे महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भागीदारी की भी प्रबल समर्थक थीं। उनका मानना था कि यदि महिलाएं स्वस्थ और शिक्षित होंगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। आज जब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस सपने की पहली ईंट रखी थी। एक स्वस्थ राष्ट्र केवल अस्पतालों से नहीं बनता है बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील नीतियों और सेवा के संकल्प से बनता है। राजकुमारी अमृत कौर ने हमें यही विरासत दी और इस विरासत को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है।

अभी हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत, फिल्म थी अनाड़ी। और दोस्तों, जब भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है, मन में रसगुल्ले, दुर्गा पूजा और रविंद्र संगीत की छवि उभर कर आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट भारत को एक अनमोल कला विरासत के रूप में दे चुका है। यह केवल एक राज्य नहीं बल्कि चलता फिरता कला संग्रहालय है। चलिए आज एक छोटी सी कलात्मक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ की मधुर चटाइयाँ केवल बैठने के लिए नहीं होती बल्कि बुनाई की बेमिसाल कला का प्रतीक हैं। और पास ही है पिंगला का पट्टचित्र कला, जहाँ कलाकार गीत गाते हुए चित्रों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं, मानो कैनवस बोल उठता हो। अब रुख करते हैं पूर्व मेदिनीपुर का, जहाँ शंख शिल्प पीढ़ियों से जीवित है। इन्हीं शंखों से बंगाली विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक शंखा चूड़ियां भी बनाई जाती हैं, जो सौभाग्य और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। और अगर बात सुई धागे से भावनाएं बुनने की हो तो वीरभूम की कांथा कढ़ाई को कोई मुकाबला नहीं। आज यही पारंपरिक कढ़ाई खूबसूरत कांथा सिल्क साड़ियों के रूप में भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। पुरुलिया के छौ मुखौटे भी कम आकर्षक नहीं है। रंग बिरंगे ये मुखौटे केवल सजावट नहीं है दोस्तों, बल्कि लोक नृत्य की आत्मा है। नदिया के घूर्णी गांव की मिट्टी की गुड़िया दुनिया भर में अपनी जीवंत अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में सांसें भर दी गई हों। हुगली के जूट शिल्प ने पर्यावरण के अनुकूल हस्तकला को नई पहचान दी है। कूच बिहार की शीतल पाटी एक ऐसी चटाई है जो गर्मियों में शीतलता का एहसास कराती है और कारीगरों के धैर्य की कहानी कहती है। दक्षिण दिनाजपुर में गोमिरा लकड़ी के मुखौटे लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत संगम है। और पहाड़ों की गोद में बसे दार्जिलिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। वहाँ के तिब्बती हस्त निर्मित कालीन अपनी बारीक बुनाई और सुंदर डिजाइन के लिए विश्व भर में सराहे जाते हैं। सोचिए एक राज्य और कितनी विविध कलाएं। इन कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि जब कोई कला खो जाती है तो उसके साथ इतिहास का एक अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मिट्टी की खुशबू, रंगों का संसार, बंगाल की हर कला में बसता है प्यार। जिलों की पहचान, विरासत का मान, इन्हें संजोना ही है सच्चे भारत की शान। और इसी राज्य के वाइब के साथ सुनते ही खूबसूरत सा गीत।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। और आजकल जरा सी थकान हुई नहीं कि मल्टी विटामिन, बाल झड़ने लगे तो सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गोलियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें पहले से ही कितनी अद्भुत दवाइयां दे रखी हैं? तो आइए जानते हैं कौन से फल और सब्जियां हमें किन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती है। संतरा, मौसमी और नींबू, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है। गाजर, इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और टमाटर, इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन हृदय स्वास्थ्य के लिए यानी आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और शरीर के हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। केला पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है, यह रक्तचाप को संतुलित रखने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक है। सेब, फाइबर से भरपूर, यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद करता है। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन और फोलेट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर में रक्त निर्माण और ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक है। चुकंदर, शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मददगार माना गया है और सहन शक्ति बढ़ाने में भी लाभकारी है। आंवला, विटामिन सी का खजाना, यह इम्यूनिटी, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पपीता, इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकते हैं। अनार, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो रक्त स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। लहसुन, पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य और संक्रमण से बचाव में उपयोगी माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए श्रोताओं, कोई भी एक फल या सब्जी किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज नहीं है। असली ताकत है विविधता में, यानी आपकी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उतना ही बेहतर पोषण मिलेगा। और हाँ, यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कमी के कारण सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है तो उसे नजरअंदाज ना करें। लेकिन बिना आवश्यकता के केवल विज्ञापनों के

गांव में आकर सप्लीमेंट्स पर निर्भर होना ठीक नहीं है। शायद इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति हर मौसम में वही देती है जिसकी हमारे शरीर को उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब भी आप बाजार जाएं तो दवाइयों को नहीं, मौसमी फल, ताजी सब्जियां और संतुलित भोजन की टोकरी भर कर लाइए। सेहत किसी कैप्सूल में बंद नहीं होती है, वह हमारी रोजमर्रा की थाली में परोसी जाती है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम को फिल्म थी डार्क। और दोस्तों, जब घर में मेहमान आते हैं और कोई पूछता है बेटी जरा चाय बना दो, तो यह बिल्कुल सामान्य सा लगता है। लेकिन अगर वही बात बेटे से कही जाए तो कई लोग हैरानी से देखते हैं। आखिर क्यों? क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े समेटना या घर को व्यवस्थित रखना केवल बेटियों की जिम्मेदारी है? नहीं, ये जीवन जीने का कौशल है जो हर इंसान को आना ही चाहिए। दोस्तों, समय बदल रहा है। आज के दौर में महिलाएं घर के साथ बाहर भी अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां भी साझी होनी चाहिए और इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। अगर बेटा अपना बिस्तर खुद ठीक करना सीखता है, अपनी प्लेट सिंक तक रखना सीखता है, अपनी अलमारी व्यवस्थित रखना सीखता है, तो वो केवल घर का काम नहीं सीख रहा होता है, बल्कि वो अनुशासन, आत्मनिर्भरता और दूसरों के श्रम का सम्मान करना सीख रहा होता है। और हाँ, जैसे जैसे बेटा बड़ा हो, उसे खाना बनाना भी सिखाइए। चाय बनाना, दाल चावल पकाना, अपने पसंद का एक सिंपल सा भोजन तैयार करना, ये केवल रसोई के काम नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है, ताकि भविष्य में वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को स्वयं संभाल पाने की क्षमता भी है। उसे बचपन से ये समझाइए कि घर के काम कभी भी जेंडर आधारित नहीं होते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना या घर को व्यवस्थित रखना, ये महिलाओं के काम नहीं है बल्कि घर के काम है, जिनकी जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। और यही सीख आगे चलकर उसे महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाएगी। बेटों को विशेषाधिकार नहीं, संस्कार दीजिए। उन्हें अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारियां भी सिखाइए। क्योंकि एक अच्छा बेटा केवल परिवार का सहारा नहीं बनता है, वो एक बेहतर समाज की नींव भी रखता है। हम सचमुच समानता अगर चाहते हैं तो उसकी शुरुआत घर से करनी होगी। बेटियों को सपने देखने की आजादी दें और बेटों को संवेदनशील बनने की शिक्षा दें, क्योंकि समानता की सीख किताबों से कम, घर के माहौल से अधिक मिलती है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हम भी आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, खेल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी जीत का जश्न मनाता है, कोई रिकॉर्ड टूटता है या हार के बाद आंखों में आंसू छलकते हैं, तो उन भावनाओं को हमेशा के लिए सहेज लेता है एक कैमरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन यादगार तस्वीरों के पीछे होता कौन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर की जिसका रिश्ता खेल और पत्रकारिता दोनों से है, यानी स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं होता है, बल्कि खेल की कहानी को एक फ्रेम में बयां करना होता है। एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फोटो कभी कभी हजारों शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देती है, चाहे क्रिकेट में उड़ती हुई गेंद हो, फुटबॉल में गोल का निर्णायक पल, या एथलेटिक्स में फिनिश लाइन पार करता खिलाड़ी। हर तस्वीर एक कहानी कहता है। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए सिर्फ कैमरा चलाना या जानना काफी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले जरूरी है फोटोग्राफी की तकनीकी समझ, जैसे कैमरा सेटिंग्स, शटर स्पीड, लेंस का चुनाव और सही एंगल की पहचान। खेलों की जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आपको खेल के नियम और उसकी गति समझ में आ जाती है, तभी आप सही पल को कैमरे में कैद कर पाते हैं। अब सवाल है कि इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे करें? आप फोटोग्राफी या मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा कई युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में भी शुरुआत करते हैं और स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं को कवर करके आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। हालांकि यह काम जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी घंटों धूप में खड़े रहना पड़ता है, कभी बारिश में मैच कवर करना पड़ता है, तो कभी एक तस्वीर के लिए सही मौके का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी तस्वीर किसी ऐतिहासिक पल की पहचान बन जाए, तो सारी मेहनत सफल लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको खेलों से है प्यार, कहानियां कहना है पसंद और कैमरा आपका साथी है, तो स्पोर्ट फोटो जर्नलिज्म आपके लिए एक शानदार करियर साबित हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग खेलते हैं इतिहास बनाने के लिए और कुछ लोग उसे कैमरे में कैद करके अमर कर देते हैं।

0: सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म थी माया। और दोस्तों, हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जी हाँ, उनकी जानकारी। क्योंकि हमारे अधिकार तभी हमारा साथ देते हैं जब हम उन्हें पहचानते हैं। तो आज हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की। मान लीजिए किसी कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा हो या यौन उत्पीड़न हो रहा हो, तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर महिला को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार प्राप्त है और वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब एक और सवाल, क्या बेटियां पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार रखती हैं? हाँ, बेटियों को भी संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त है जो बेटों को है। और अगर किसी महिला के साथ घर के भीतर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक हिंसा हो रही हो, तो उसे भी अपनी नियति नहीं मानना है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार हर महिला को प्राप्त है। साथ ही महिलाओं को समानता का अधिकार भी दिया गया है। कानून की नजर में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। शिक्षा हो, रोजगार हो या सम्मानजनक जीवन, हर महिला इन अधिकारों की हकदार है। तो दोस्तों, अक्सर महिलाएं दूसरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती है लेकिन अपने अधिकारों को लेकर मौन रह जाती है। याद रखिए, जागरूकता आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास बदलाव लाता है। तो आइए आज स्वयं से एक वादा करते हैं, अपने अधिकारों को जानेंगे, उन्हें समझेंगे और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग भी करेंगे। क्योंकि सशक्त महिला सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज को दिशा देती है। और अभी हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। सुदर्शन मुखी जी, गौरी शंकर वर्मा जी और नवीन भाटिया जी, आप सबको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी चोरी चोरी। और दोस्तों जरा सोचिए, अगर पेड़ों की उम्र ना बढ़े तो घनी छांव कहाँ से आए, अगर नदी आगे ना बढ़े तो सागर तक कैसे पहुंचे, फिर इंसान अपनी उम्र बढ़ने से इतना क्यों घबराता है। शायद इसलिए क्योंकि समाज ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि जवान दिखना ही सफलता है, झुर्रियां समस्या है, सफेद बाल कमजोरी है और बढ़ती उम्र मानव जीवन का ढलान। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। उम्र केवल कैलेंडर के पन्नों पर बदलती संख्या नहीं है, ये अनुभवों का खजाना है, रिश्तों की गहराई है और जीवन को समझने की परिपक्वता है। 20 साल की उम्र में हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, 40 की उम्र में उसे समझना शुरू करते हैं और 60 की उम्र में जीवन का वास्तविक अर्थ जानने लगते हैं। सोचिए, अगर उम्र बढ़ना बुरा होता तो हम अपने बच्चों के जन्मदिन क्यों मनाते, हर साल केक क्यों काटते? सच तो यह है कि हम उम्र बढ़ने से नहीं बल्कि उससे जुड़े बदलावों से डरते हैं। लेकिन बदलाव तो जीवन का दूसरा नाम है। विज्ञान भी यही कहता है कि स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम और सामाजिक जुड़ाव बढ़ती उम्र का बोझ नहीं है बल्कि एक सुंदर यात्रा बना सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई आपके सफेद बाल दिखे तो उसे छिपाने से पहले ये याद कर लीजिए कि ये आपके अनुभवों का पदक भी हो सकता है, क्योंकि उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन उसे गरिमा, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो आइए बढ़ती उम्र से डरना छोड़ें, उसका स्वागत करें, क्योंकि जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर उसके बाद के अध्यायों में लिखी जाती है।

मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म कभी कभी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। खुद से प्यार कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, छोटी छोटी खुशियों को संजोएं। फिर मिलेंगे नए विषय नए प्रेरणा के साथ। दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फिट्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम

0: करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के 1:10 हुए हैं और रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम के साथ जुड़ी है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास फिल्मी सफर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक स्त्री के मन की गहराई, प्रेम की तपिश और त्याग की, मौन शक्ति की कहानी।

आज बात होगी 1963 की कालजयी फिल्म बंदनी की। बंदनी यानी बंधनों में बंधी हुई। लेकिन क्या सच में सिर्फ जेल की सलाखें इंसान को कैद करती हैं, या कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ फैसले भी हमें जीवन भर बांध देते हैं? यही सवाल इस फिल्म की आत्मा है।

वर्मन की आवाज में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। दोस्तों, बंदनी फिल्म के निर्माता निर्देशक थे विमल रॉय, जिन्होंने दो बीघा जमीन और मधुमती जैसी फिल्में बनाई थी। भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से एक जिन्होंने साधारण कहानियों में असाधारण संवेदनाएं ढूंढी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे नूतन, जिन्होंने मुख्य किरदार यानी कल्याणी का किरदार निभाया, अशोक कुमार विकास घोष के किरदार में थे, और धर्मेंद्र ने देवेंद्र का रोल निभाया जो कि जेल का डॉक्टर होता है। और दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म में अभिनय से ज्यादा भावनाएं बोलती थी।

की कहानी कल्याणी नाम की महिला कैदी के इर्द गिर्द घूमती है। जेल की चार दीवारी में बंद कल्याणी बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर बीते हुए समय की गूंज है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो यहाँ तक क्यों पहुंची। एक समय था जब वो प्रेम करती थी, सपने देखती थी, लेकिन जीवन में उसके सामने ऐसे मोड़ रखे कि भावनाएं और परिस्थितियां टकरा गई। सिर्फ फिल्म में ये बात नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछती है कि इंसान के फैसलों के पीछे उसकी मजबूरी, उसका प्रेम और उसका दर्द कितना बड़ा होता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है वंदनी। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल।

माना जाता है कि इस फिल्म में नूतन ने अपने करियर के सबसे प्रभावशाली अभिनय में से एक किया था। उनके चेहरे के भाव, आंखों की खामोशी और संवादों का संयम यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। कई समीक्षकों ने लिखा कि कुछ दृश्यों में उन्होंने बिना संवाद वाले कहानी कह दी। आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र की शुरुआती महत्वपूर्ण फिल्मों में से ये फिल्म एक थी। ये फिल्म उस दौर में धर्मेंद्र अपने शुरुआती अभिनय सफर में थे। इस फिल्म में उनका किरदार शांत, सहायक और संवेदनशील था।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं आपके ईमेल्स की तरफ। हमें बहुत से श्रोताओं ने अपने ईमेल्स भेजे हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं ये मैसेज हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हाथी से। भेजने वाले हैं राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। ये लिख रहे हैं कि इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है और जानकारी भी बहुत बढ़िया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के लोग। आप हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन। और ये मैसेज भेजा है सलार पहलगांव कश्मीर से परजादा मिराजुद्दीन ने। और आप हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी। और बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इनको कहानी और गीत पसंद आ रहे हैं। आप हैं सर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, गांव लोहकर ठाकुरावाला से। और ये भेजा है मैसेज हमें गंज डुंडवारा से। भेजने वाले हैं गंज शमसुल कमर राही। और आप हैं नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। पीपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और आप हैं बबलेश पवार जी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से हमारे साथ जुड़े हैं पीएस नवाडकर, निर्मला, विशाल और सोपान तायपड़े। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी और सीता और गीता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राय, वेद प्रकाश चौहान, सुविदार अमर सिंह जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आप हैं उषा मोहन और विदित मोहन पहाड़गंज से। और ये मैसेज हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही का, महराज जहां का, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शिद्दत से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस फिल्म का संगीत फिल्म की आत्मा था, संगीत जिसने कहानी को और गहरा किया। फिल्म का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने और गीतों ने फिल्म को सिर्फ सजाया नहीं, कहानी का हिस्सा बना दिया। और जब गीतों की बात चले तो वो गीत कौन भूल सकता है, मोरा गोरा अंग ले ले। ये गीत खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बोल लिखे थे गुलजार ने और ये उनके शुरुआती चर्चित गीतों में शामिल हुआ। इसके अलावा मेरे साजन है उस पार और जाने वाले हो सके तो लौट के आना आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। और हाँ, बाकी गीत थे चैलेंज के।

दोस्तों, बंदनी उस दौर की फिल्मों से अलग थी। यहाँ न शोर था न बड़े बड़े संवाद, लेकिन भावनाओं की गहराई थी। ये फिल्म भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, उसके निर्णय और उसके भीतर के संघर्ष को बहुत संवेदनशील तरीके से दिखाती है। आज भी जब हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों की बात होती है तो बंदनी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।

दोस्तों, बंदनी हमें ये याद दिलाती है कि हर इंसान की कहानी में कुछ अनकहे अध्याय होते हैं। कभी कभी सबसे गहरी कैद सलाखों की नहीं, किसी की यादों की होती है। इसी एहसास के साथ आज के इस फिल्मी सफर को यहीं विराम देते हुए, जाने से पहले इस फिल्म का गीत सुनिए और महसूस कीजिए उस दौर की संवेदनाओं को। मैं आपके साथ ही अर्चना गोयल फिर

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस से चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव पहला चोण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैण लई दो दिन दौरे ते अज फ्रांस के एवियन पहुंचणगे। श्री मोदी ने अज कहा कि पिछले दहाके च देश भर में बुनियादी ढांचे च रिकॉर्ड सुधार होया है। 21 जून नूं होण वाली नीट यूजी 2026 की मुड़ प्रीख्या के मद्देनजर सरकार ने 22 जून तक टैलीग्राम ऐप राही ऑनलाइन संदेश भेजण ते रोक ला दिती है। सुप्रीम कोर्ट ने अज केंद्र ते राज्यां तों उस पटीशन ते जवाब मंगया जिस विच कहा गया कि नागरिकता निवास ते रहायशी पते दे सबूत वजों आधार कार्ड की दुरवरतों हो रही है। तो भारत न्यूजीलैंड हो रहे महिला FIH हाकी नेशनस कप के सैमीफाइनल पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैण लई दो दिन दौरे ते अज फ्रांस के एवियन पहुंचणगे। श्री मोदी स्लोवाकिया की अपनी यात्रा खत्म करने तों बाद फ्रांस लई रवाना हो गए ने। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री लगातार 7वीं ते भारत की 13वीं भागीदारी होगी। G7 सम्मेलन भारत लई बहुत रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री विश्व मंच से ग्लोबल साउथ की आवाज़ और चिंतावां नूं मजबूती नाल बुलंद करनगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आशामी प्रधानमंत्री के पहुंचने से उन्होंने रस्मी तौर पर स्वागत करेंगे। स्वागत तो बाद श्री मोदी नवीं भाईवालियां बनाने अंतरराष्ट्रीय एकता का पुनर्निर्माण विषय से कुछ पदरी कार्य सैशन संबोधन करेंगे। शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री कनेडियन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, बरतानिया के प्रधानमंत्री कीर स्टामर से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहयान दुवलियां मीटिंगा करेंगे। जिमें कि खबर दी जा चुकी है 52वां जी शिखर सम्मेलन कल फ्रांस के एवन में शुरू होया। इस दुनिया दी वड्डियां अर्थव्यवस्थावां दे नेता प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां ते चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुख अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों नाल निपटण लई रल के काम करने बारे एक वर्किंग डिनर की मेजबानी की थी। इस तों पहलां श्री मैक्रों ने G7 देशों के नेतावां का रस्मी तौर पर स्वागत किया। इन्हां विच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के प्रधानमंत्री कीर स्टामर, यूरोपियन कमिशन के प्रधान उर्सुला फॉन डेर लेयन और यूरोपियन कौंसल के प्रधान एंटोनियो कोस्टा शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया का उन्होंने दौरा भारत और स्लोवाकिया दरमियान दवले संबंधों को होर मजबूत करेगा। अपनी यात्रा की समाप्ति से एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोहां देशों विचकार मजबूत व्यापारिक संबंध नौजवानों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। उन्होंने स्लोवाक सरकार और लोगों को मिले प्यार का धन्यवाद प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि पिछले दहाके च देश भर में बुनियादी ढांचे च रिकॉर्ड सुधार होया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट माई

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मौतल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिर्फ लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरखास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की इस्लाहात को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियान पहुंच रहे हैं, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। जनाब मोदी स्लोवाकिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे, जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है। G7 की यह सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जुनूब की आवाज और तशवीश को जोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम वहां पहुंचने पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों वज़ीर-ए-आज़म का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क्याम और बैन-अल-अक़वामी इत्तेहाद की अस्तर नौ तश्कील। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्के हैं। इसके बाद जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर कल शाम पेरिस पहुंचेंगे।

0: जीत के साथ ही भारत 6 पॉइंट के साथ पूल ए में सर फहरिस्त आ गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कैप वर्दे ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी सतह पर मजबूत टीम स्पेन के साथ मैच ड्रॉ पर खत्म किया और कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। कैप वर्दे के 40 साल गोलकीपर वोजिन्हा ने हरीफ टीम की तरफ से किए गए कई गोल बचाकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मुअत्तल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरखास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की इसलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को एक के मुकाबले 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। Headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Evian, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NETUG retest. Message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi, in a social media post, noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia, yesterday. Calling it a Banaras Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest

0: number 2 ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in their opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avion, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month ahead of NEET UG retest. Message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी

0: कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि जी सात देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे एआई आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी एआई डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
0: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डीपीआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक सिवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा

0: युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा।

0: चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओ, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं, वे भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे सम्मानित गायकों और संगीतकारों में गिने जाते हैं। साथ ही अपनी मखमली और गहरी आवाज के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी प्रिय हेमंत कुमार जी के बारे में, जो कि एक महान गायक ही नहीं, साथ ही एक प्रसिद्ध संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम की उनके इस गीत

0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।
1: बाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल।

0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं, तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या हैं? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।

0: लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ceiet.nic.in। आप हमारा IVRS नंबर भी नोट कर दें, 8800-440-559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
5: फिर मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए

0: कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
2: 15, 40
3: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
2: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
2: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
2: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
2: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
2: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
2: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
2: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
2: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
3: हाँ
2: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
2: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
2: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
2: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
2: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए, तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: 2 ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।

0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
1: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई जॉनसी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉनसी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉनसी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉनसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉनसी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉनसी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ हाँ, मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
3: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉनसी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
1: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था।

0: पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
1: जॉन सी। एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही। मिस्टर बेरमैन,
2: ओह गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
2: पेंटिंग?
1: हाँ।
2: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
2: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
2: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
2: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
2: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
2: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
2: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
2: मास्टरपीस।
1: हाँ
2: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

खिदमत में अदावर्स, ये आकाशवाणी है। सहपहर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम करता है आपका मेजबान नईम। हमारी नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशों वाले प्रोग्रामों पर।

इस मजलिस में 3:05 पर आप खबरें सुनेंगे और 3:15 पर फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा मेरी पसंद। सपे 3:30 प्रोग्राम पेश होगा अदबनुमा और शाम 4 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाफों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक और शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी। शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये थे एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

0: मीडियम वेव से 1,071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTV डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सवेरे के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजीम से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बराती सलावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। भारत ने अकवाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरखास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किया है जिसमें आधार को सिर्फ शनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियान पहुंच रहे हैं जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। यह कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। जनाब मोदी स्लोवाकिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस रवाना हो गए। वजीर आजम G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है। G7 की यह सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि वजीर आजम इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जुनूब की आवाज और तशवीश को जोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम वहां पहुंचने पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों वजीर आजम का बाजाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन से शिरकत करेंगे जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क्याम और बल्कवामी इतिहाद की असर नौ तश्कील। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। जनाब मोदी फ्रांस के सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुक के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फन और सकाफत में लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की ताकत होती है। उन्होंने यह बात स्लोवाकिया के सदर के साथ कल स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इसे ब्रातिस्लावा में भारत की एक झलक करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा।

संगेवील पब्लिकेशन सरदपार से उनकी कुलियात शाये हुई, जिसमें उनके शायरी के 6 मजमुए शामिल रहे और यही कुलियात सूरज को निकलता देखूं के नाम से भारत से भी शाया हो चुका है। उनके कलाम का तर्जुमा फ्रेंच, जर्मन, रूसी, मराठी, बंगाली और तेलुगु जबानों में हो चुका है।

एक ऐसे वक्त में जब उर्दू शायरी में थोड़ी सी उदासी थी और उस तरह के मौजूआत पर ज्यादा जोर दिया जाता था, शहरयार ने एक अलग राह इख्तियार की और उर्दू शायरी के अंदर एक नई जिद्दत पेश की। शहरयार ने अपनी शायरी में जिस सादगी के साथ आज के इंसान की तकलीफ दुख दर्द का बयान किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने उर्दू शायरी के क्लासिकी रंग को बरकरार रखने के लिए जिस तरह जदीदियत को उसमें शामिल किया, वो काबिले तारीफ है। और ना सिर्फ एक अच्छे शायर और अदीब थे बल्कि वो एक अच्छे नगमा निगार भी थे। उन्होंने उमराव जान, गमन जैसी मशहूर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए नगमे भी लिखे जो इस वक्त हम आपकी नजर कर रहे हैं।

उसने दिल में सोचा, वो यही तो चाहती है, पंछी उड़ जाए तो उसे भी उड़ने का मौका मिलेगा। हकीकत तो ये कि ये जिंदगी उसे अजीब लगती थी। वसुधा और गिरजा कोई भी उसे गलत नजर नहीं आता। एक जिंदगी तो मिलती है जीने के लिए, फिर ये जिंदगी आज़ादी के साथ क्यों न जी जाए। ये क्या कि बस एक ही खूट से बंध के रह जाओ। वो अपनी सहेलियों को जानती थी, जिनके कॉलेज के दिनों में कई कई बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे। हर दिन मौज मस्ती के साथ गुजरता। अब शादी हो गई तो पतिव्रता होने का नाटक चल रहा है। वो मुखौटा लगाकर जी नहीं सकती, इसलिए उसे ऐसे नाटक पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि एक नई दुनिया नीरज की भी हो, जिसमें उसके अलावा भी कोई हो, और एक ऐसी दुनिया आज़ादी के साथ इसकी भी हो। गिरजा की रोमानी दुनिया से उसे जलन होती। वसुधा के आगे बढ़ने की आज़ादी खुश करती थी, लेकिन एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ कि वसुधा की आज़ादी के आगे ब्रेक लग गया। 10 बजे का वक्त होगा, अचानक धड़धड़ाते हुए घर में कई लोग दाखिल हो गए। इसमें एक रंजीत मास्टर की बीवी भी थी, उसके साथ उसके 2 पहलवान भाई थे। रंजीत की बीवी जोर जोर से चिल्लाती हुई वसुधा पे बरस रही थी। पहलवान भाइयों की हालत ये थी कि जरा सा मौका मिले तो गिद्ध की तरह वसुधा को नोच खाएं। नीरज ने किसी तरह वसुधा का बचाव किया। गिरजा आधे बंद कमरे से यह सारा मंजर देख रही थी। बाबूजी अपने कमरे में बंद होकर चीख रहे थे। माँ का चेहरा किसी लाश की तरह सर्द हो रहा था। नीरज ने बचाव का अंदाज अपनाया। आप लोगों से कोई गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई है जी, इश्क मटक्का करने ये हर रोज स्कूल पहुंच जाती है। झूठ हो तो स्कूल जाकर पूछ लो। और रंजीत भी तो आए दिन तुम्हारे घर का चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाने देते हो? घर जमाई है जो रोज आने देते हो इसे? नीरज ने माफी मांग ली, हाथ जोड़ दिया। अगर ऐसा है तो अब नहीं होगा, आज से नहीं होगा। ना ये स्कूल जाएगी और ना कोई यहाँ आएगा। रंजीत की बीवी फिर चढ़ दौड़ी। अरे मुझे मत पढ़ाओ ये सब, तुम तो सारा दिन ऑफिस रहते हो, तुम्हें क्या पता लगेगा। इसको तो पति ने छोड़ दिया, तुम तो यही चाहोगे ना कि किसी तरह कोई जुगाड़ लग जाए। जुगाड़? नीरज ने बेबसी से पहलवान भाइयों की तरफ देखा। आप इन्हें ले जाइए प्लीज, अब ऐसा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ठीक है हम जाते हैं, लेकिन आगे ऐसा हुआ तो खैरियत नहीं है आपकी। पहलवान भाई अपनी बहन के साथ लौट गए। उस दिन पहली बार नीरज ने वसुधा पर हाथ उठाया। निर्लज, इसीलिए पति ने डिवोर्स दिया होगा। अब यहाँ भी नैन मटक्का शुरू हो गया। आसपास क्या इज्जत रही हमारी। उस दिन वो देर तक घर की दीवार पर काई की तरह जम गए धब्बों को देखती रही। ये धब्बे कहाँ से पैदा हो जाते हैं? मर्द कुछ भी कर ले, इसकी इज्जत को कोई खतरा नहीं। और जरा सा चौखट पार कर ले तो मर्द की नाक कट जाती है। वो जानती थी नीरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तलाक के बाद वसुधा के नीचे हुए पर एक बार फिर काट दिए गए। उस दिन रोती हुई वसुधा को उसने तसल्ली दी, उसके अंदर का बांध टूट गया था। भाभी, जरूरत क्या हम औरतों की होती है? हम में से हर औरत उस मांग को खत्म करने के लिए शराफत का एक पुल बना देती है। ये पुल एक मर्द तक जाता है जो उसका अपना मर्द होता है, और अगर ये मर्द ठुकरा दे तो वो कितने दिनों तक सैलाब को रोक सकती है? पानी का जोर आएगा तो पुल तो टूटेगा ही। वसुधा ने नम आंखों को खुश किया। उस दिन गिरजा को भी परेशान देखा। पहली बार उसने सैलाब की आहट को महसूस किया, जैसे तेज तेज समुन्दर की लहरें हों जो तेजी से इसके घर की तरफ बढ़ रही हों। वसुधा का जुमला बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसके कानों में गूंजता रहा। ये पुल सिर्फ एक मर्द तक जाता है, वो सोच में डूब गई थी। अगर इस पूरी कायनात के नज़्म में एक मर्द औरत को समझने वाला ना हो तो औरत इस पुल से होकर अलग अलग दिशाओं में क्यों नहीं जा सकती? अगर एक छोटी सी दुनिया में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी रोमानियत के तस्वर को कोई मर्द न समझना चाहे तो पुल को क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? लेटे लेटे उसने नीरज को आवाज़ दी। सो गए क्या? नहीं, क्यों? मुझे बताओगे वसुधा की गलती क्या थी? नीरज एकदम से चौंक पड़ा। मतलब ये है कि वसुधा की कोई गलती नहीं थी। कुछ सैलाब ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ बहा कर ले जाते हैं। उसने सच कहा था। आने वाले कुछ महीनों में चुपके से ऐसा हुआ, सैलाब बहुत कुछ बहा कर ले गया। कितनी खामोशी से कुछ कहानियां बंद हो जाती हैं, कितनी खामोशी से जिंदगी के बढ़ते सफर में अचानक ब्रेक लग जाता है। कुछ चेहरे गुम हो जाते हैं तो लगता ही नहीं कि वो कभी हमारे आस पास भी थे। एक दिन वसुधा गुम हो गई बगैर किसी को कुछ बताए। उस दिन बाबूजी नहीं चीखे, वो देर तक घर नहीं आई, लेकिन किसी ने FIR लिखवाने के बारे में सोचा तक नहीं। वो दूसरे दिन भी नहीं आई, परेशानी सिर्फ गिरजा को थी। बाबूजी खा पी कर अपने कमरे में ही रहे। माँ पत्थर के मुजस्मे की तरह दीवार पर जमे हुए धब्बों को देखती रही, मगर उनके मुँह पर कभी वसुधा का नाम नहीं आया। फिर देखते ही देखते एक महीना गुजर गया, नीरज और घर वालों के लिए उम्मीद से भरा महीना। उस एक महीने में एक तूफान खामोशी से गुजर गया। वो गहरे सदमे में थी। क्या वसुधा पहले इस घर में थी? क्या वसुधा से इस घर के लोगों को पहले भी कोई लगाव था? क्या वसुधा के गुम हो जाने से कोई मतलब नहीं है इन्हें? फिर एक दिन गिरजा गुम हो जाएगी, फिर एक दिन वो भी गुम हो जाएगी, पर क्या फर्क पड़ेगा किसी को, उसे लगा। वसुधा ने उस रात गुफ्तगू के बाद वो पुल

वो सैलाब के पानी में बहती हुई दूर चली गई हो। हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं और इस जिंदगी में अपने लिए पुल से अलग जाते हुए रास्तों के बारे में गौर करते रहते हैं। कुछ महीने और गुजरे, गिरजा को एक लड़का पसंद आ गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। नीरज पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक दिन वो अपने पति के साथ घर आई। वो एक दुबला पतला सेल्समैन था। गिरजा ने साफ साफ कहा, जब तक माँ बाप जिंदा हैं वो कभी कभी आ जाया करेगी, किसी को भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुरा वक्त आया तो वो वसुधा की तरह घर नहीं लौटेगी, वो अपना अच्छा बुरा समझती है। एक साथ कितने पटाखे छूटते चले गए। वो बचपन के झूले पर सवार थी जहाँ वो किसी बात की परवाह नहीं करती, लेकिन वो भूल गई थी कि अगर वो लड़की पैदा हुई है तो कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। उसका जिंदा रहना ऐसा ही है जैसे उसका गुम हो जाना। उसे वसुधा की बात याद आ रही थी, पानी का जोर आएगा तो पुल तो टूटेगा ही। पहली बार उसे लगा, क्या उस घर को उसकी ज़रूरत है? नीरज को, नीरज के माँ बाप को या उसके माँ बाप को उसकी ज़रूरत थी? एक हौलनाक सन्नाटा उसके जहन में आबाद हो रहा था। उसने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया था, ये उसका ज़ाती फैसला था। अब वो जॉब करेगी। नीरज का अच्छा बुरा मानने की उसे परवाह नहीं थी। थोड़ी बहुत तलाश के बाद उसने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली और अचानक एक दिन दफ्तर में कंप्यूटर पर काम करने के दौरान उसे एहसास हुआ कि कुछ तेज लहरें हैं जो अचानक इसके जिस्म में दाखिल हो रही हैं। नीरज की मौजूदगी में भी उन लहरों को कभी इसने इस तरह जागते हुए महसूस नहीं किया था। वो ये बताने में नाकाम है कि नीरज और उसके दरमियान असल रिश्ता क्या था। एक ऐसा रिश्ता जहाँ जिस्म के सवा मोहब्बत का कोई उफक रोशन नहीं होता, मोहब्बत का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। उस वक्त कुछ लहरें थीं जो उसके अंदर गुनगुना रही थीं, मचल रही थीं। उसने नज़रें उठाई तो सामने माथुर खड़े थे, कंपनी के मालिक, 45 साल का एक खूबसूरत नौजवान। मिस्टर माथुर ने उसे अपने केबिन में आने के लिए कहा। पहली बार उसने माथुर से बहुत कुछ सीखा, जैसे ये कि ज़िंदगी तुम्हारी है रजनी, तुम्हें अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। मुद्दत के बाद उसने किसी और के मुंह से अपना नाम सुना था। उसे लगा जैसे कोई है जो उसे जानता है या जानना चाहता है। फिर कुछ मुलाकातों में माथुर से उसने अपने और नीरज के ताल्लुकात का जिक्र किया। माथुर ने कहा लगाया, हम अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं रजनी, रिश्ते नाते सब यहीं रह जाते हैं। उस रात वो घर आई तो काफ़ी खुश थी। दूसरे दिन माथुर ने अपने केबिन में बुलाया, कॉफ़ी पेश की, कुछ देर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जानती हो रजनी, छल क्या है, धोखा क्या है? दरअसल हम सारी ज़िंदगी खुद को धोखा देते हैं। धोखा सिर्फ खुद को दिया जाता है। वो कैसे सर? मोहब्बत खुद से होनी चाहिए। हम खुद से मोहब्बत करते हैं तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है रजनी। हम दूसरों की चाहतों के नाम ज़िंदगी कर देते हैं। समाज ने रिश्ते नाते रस्म रिवाज के बड़े बड़े मुजस्मे लगा रखे हैं, हम उनमें खोकर अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। ये धोखा है खुद के साथ। उस दिन पहली बार माथुर ने घर आने की दावत दी थी। वो खुद से अब कोई छल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनकी दावत को उसने खुशी से कबूल कर लिया। छुट्टी का दिन था, उसे तैयार होता देख नीरज चौंक पड़ा। उसने बताया कि बॉस ने बुलाया है, घर के डेकोरेशन का काम है। नीरज ने फिर पूछा, फिर तो एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए? उसने पलट कर नीरज को देखा। नीरज ने अपनी बात जारी रखी, काम करते हुए थक गया हूँ, सोचता हूँ कुछ पैसे मिल जाए तो अपना काम शुरू करूँगा। उसने एक फातह नज़र से नीरज को देखा। वो वसुधा नहीं थी उस वक्त, वो गिरजा भी नहीं थी उस वक्त, नीरज भी वो नीरज नहीं था। वो उसे एक कमज़ोर इंसान नज़र आया, एक ऐसा इंसान जो खुद से छल कर रहा था। लोहे का एक बड़ा सा आहनी दरवाज़ा, दरवाजे के पास गार्ड के साथ एक पहरेदार था। नाम बताने के साथ ही दरवाज़ा खुल गया। माथुर ने शायद इसके आने की इतला दे दी थी। गेट के बाहर एक बड़ा सा लॉन, कई गाड़ियाँ खड़ी थी। गार्ड ने रास्ता बताया। उसने बंगले की खूबसूरती का जायज़ा लिया। फूलों के दरमियान पत्थरों के नायाब मुजस्मे रखे थे। उसने अंदर जाने वाले दरवाजे के पास कदम रखा। शीशे का दरवाज़ा था जो उसके कदम रखते ही खुल गया। अंदर बड़ा सा हॉल था। चारों तरफ ऊंची पत्थरों की खूबसूरत दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंगें झूल रही थीं। उसे एक औरत नज़र आई, खूबसूरत, लांबा कद, जीन्स और टी शर्ट पहने, लेकिन चेहरे पर किसी मलका की तरह गुरूर। गार्ड ने उसे मेहमानों के कमरे में पहुँचाया। दो मिनट बाद ही माथुर मुस्कुराता हुआ सामने था। इधर उधर की रस्मी गुफ्तगू के बाद उस औरत के बारे में दरियाफ्त किया जो पहली बार उसे मिली थी। माथुर मुस्कुराया, वो मेरी बीवी है। वो तो बहुत खूबसूरत है सर। माथुर फिर जोर से हंसा, तुम जिस दरवाजे से आई हो वहाँ तुम्हें बहुत से मुजस्मे नजर आए होंगे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी चारों तरफ मुजस्मे लगे हैं। मेरी बीवी भी एक खूबसूरत मुजस्मा है, कीमती पत्थर। वो मेरी मौजूदगी का बुरा तो नहीं मानेंगी? क्यों? माथुर हंसा, हम एलिट क्लास वाले हैं, यहाँ बड़ी से बड़ी बातों का बुरा नहीं माना जाता, बल्कि सब कुछ पहले से तय होता है। यहाँ सबको आगे जाने का रास्ता पता है,

0: हम में से कोई भी एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देता। फिर माथुर ने अपना घर दिखाया। उसे बार बार एहसास होता रहा कि हर मुजस्मे के अंदर एक जिंदगी है। दीवारों में बड़ी बड़ी आंखें हैं, पत्थरों में चीखें हैं। माथुर की बीवी उसे दोबारा नजर आई, मगर माथुर की बीवी ने उससे कुछ जानना चाहा, ना उसने कुछ माथुर की बीवी से। माथुर ने बताया कि घर के डेकोरेशन का कुछ काम बाकी है, वो कुछ दिन ऑफिस की जगह यहीं काम करे। उसने मंजूर कर लिया, लेकिन एक हकीकत और भी थी, वो यहाँ के मुजस्मों से डर गई थी। उसे इस बात का एहसास था कि कहीं उसे भी इस घर में मुजस्मा बनकर न रहना पड़े। वो अपने अंदर तेज लहरों की आहट सुन रही थी। वो घर से बहुत कुछ सोचकर चली थी, इसलिए ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ जब अपनी मर्जी से इसने खुद को आवारा लहरों के हवाले कर दिया। कोई काम मर्जी से किया जाए तो गम नहीं होता। उस रात नीरज ने पूछा, नए काम में उसे कितने पैसे मिलेंगे? उसने जवाब दिया, परेशान मत हो, तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। उसके बाद नीरज ने उससे कुछ नहीं पूछा, वो करवट बदल कर सो गया था। उसे वसुधा याद आ रही थी। वो एक ऐसे पुल पर खड़ी थी जहाँ कोई भी रास्ता किसी भी तरफ नहीं जाता, हर रास्ता लौट कर उसकी तरफ ही आता है। यही तो माथुर ने कहा था, दरअसल हम खुद से धोखा करते हैं। मुजस्मों के दरमियान कई दिन गुजर चुके थे। उस दरमियान उसने ये भी जाना कि बेजुबानी की भी जुबान होती है। पत्थर के मुजस्मे भले ही कुछ न कहते हो, मगर उसके अंदर से निकलने वाली आवाज़ों को सुना जा सकता है। माथुर की बीवी उसे एक ऐसी औरत मालूम हुई जो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं थी। नीरज और माथुर की बीवी में फ़र्क था। नीरज भी सब कुछ जानता था, मगर उसके सामने एक टारगेट था, बिजनेस। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसे ये भी मालूम था कि माथुर क्या चाहता है। एलिट क्लास के ये शरीफ लोग हज़ारों में एक का इंतखाब करते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई स्टिंग ऑपरेशन उनकी शराफत को बेनकाब न कर दे। यहाँ सब मुजस्मे हैं। वसुधा और गिरजा के लिए उसकी मोहब्बत जाग रही थी। वसुधा भी मुजस्मा नहीं थी, एक रद्दअमल था उसके अंदर। गिरजा भी मुजस्मा नहीं थी, उसे उन लोगों से भी हमदर्दी थी जिन्होंने गुस्से में आकर अपनी बीवी या शोहर को सिर्फ इसलिए हलाक कर दिया कि इनके ताल्लुकात दूसरी औरत या दूसरे मर्द से थे। कुछ लोग अभी भी बाजार का हिस्सा नहीं बने हैं, इसे भी नहीं बनना है। उस दिन वो माथुर के कमरे में थी, बरसात शुरू हो गई थी, फिर बारिश थम गई। वो कपड़े पहनकर बाहर आई तो एक मुजस्मे के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। इतने दिनों में पहली बार माथुर के जिस्म से आने वाली बदबू का एहसास हुआ था। वो इस बदबू का साथ बहुत दिनों तक गवारा नहीं कर सकती थी। उसे यकीन था कि एक दिन माथुर उसके साथ यही करने वाला है। वो माथुर से हाउस डेकोरेशन के नाम पर एडवांस चेक ले चुकी थी। चेक लेते हुए उसके मुंहों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। माथुर के लिए उस मुस्कुराहट को समझना आसान नहीं था। उस दिन पहली बार उसने खुद को हल्का और तरोताज़ा महसूस किया। माथुर ने मुस्कुराकर कहा था, डेकोरेशन का काम अभी कुछ दिन और चलेगा, चेक रख लो, कुछ पैसों की ज़रूरत हुई तो। इसने महसूस किया माथुर की आंखें इसके जिस्म में चुभ रही हैं। माथुर ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। मैं चाहता हूँ अब यहीं तुम्हारे लिए कमरा बना दूँ, ऑफिस का काम यहीं से संभाल लो। वो मुस्कुराई थी, क्यों नहीं सर, जैसा आप चाहें। लेकिन उस दरमियान वो कुछ फैसला अंदर ही अंदर ले चुकी थी। आखिर वो एक इंटीरियर डेकोरेटर थी, इसके जिस्म पर कुछ पराई उंगलियों के दाग थे तो यहाँ की दीवारों पर भी उसके डेकोरेशन की निशानियाँ भी मौजूद थी। उसने नज़र भरकर आसपास के मुजस्मों पर ताराना निकाल डाली और बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने देखा माथुर की बीवी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों उतरने के बाद पोटिकों की तरफ बढ़ रही है। उसे नफरत महसूस हुई, एक जिंदा लाश जिसे उसके शौहर ने जीते जीते मुजस्मे में तब्दील कर दिया था। वो बहुत तेज़ी से फैसला ले रही थी। इस बार इससे कोई लापरवाही नहीं हुई थी। इसने माथुर की कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे मुजस्मा नहीं बनना, उसे अब अपने लिए भी जीना है। एक मुद्दत से वो अपनी ज़िंदगी भूल चुकी थी, अब उसको एक नया सफ़र शुरू करना है। इस नए सफ़र के तमाम उतार चढ़ाव के बारे में गौर करना था। घर आने के बाद एक ख़ास बात हुई। नीरज लाफिंग बुद्धा का छोटा सा मुजस्मा लेकर आया था। मुजस्मा उसकी तरफ बढ़ाते हुए नीरज ने कहा, अच्छा है ना, इस घर को मुस्कुराहट की ज़रूरत है। उसने मुजस्मे को बेदर्दी से ज़मीन पर पटक दिया। मुजस्मों की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़मीन पर बेरहमी से पटकने के बावजूद भी लाफिंग बुद्धा पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उछल कर दीवार से लग गया। अचानक उसे एहसास हुआ, गोल मटोल सा लाफिंग बुद्धा उसकी तरफ ही देख रहा हो, और सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट में और भी इजाफा होता जा रहा हो।
1: अभी आप सुन रहे थे ये अफसाना, उनवान था लाफिंग बुद्धा, और ये अफसाना पेश कर रही थी मोहतरमा तबसुम फातिमा। इसके साथ ही आज का अदबनुमा प्रोग्राम खत्म करने की सभीहा को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबनुमा, पेश कर रही थी सभीहा फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशा जा

0: कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है।
1: ये भोलापन तुम्हारा, ये भोला

0: बिन बादल बरसात, यह है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। आवाज़ें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, और मौसीकी तरतीब दी है खुद हेमंत कुमार ने।
1: एक बार जरा फिर कह।

इस्तेमाल करने की अपील की गई है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के एफआईएच नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर फ्रांस के शहर एवियान पहुंच गए हैं, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। एवियान में पहुंचने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करने और अहम आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करने के मुंतजर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत एक ज्यादा पायदार और खुशहाल कुर्रे अर्ज के लिए इज्तिमाई कोशिशों को आगे बढ़ाने के तई अहद बस्ता है। इससे कबल वजीर आजम एवियान जाते हुए स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में कुछ देर के लिए रुके। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के सदर गाय परमेलिन ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की और भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अहद को दोहराया। वहां कुछ देर रुकने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी एवियान रवाना हो गए, जो जेनेवा से कोई 45 किलोमीटर दूर है। वजीर आजम G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे, जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है। G7 की ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वजीर आजम इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जुनूब की आवाज और तशवीश को जोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों वजीर आजम का बाजाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क्याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़सरेनो तश्कील। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम मोदी, कैनेडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। आज रात जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से दी जाने वाली जियाफत में शिरकत करेंगे। सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फन और सकाफत में लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की ताकत होती है। उन्होंने ये बात स्लोवाकिया के सदर पीटर पालेग्रेनी के साथ कल स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इसे ब्रातिस्लावा में बनारस की एक झलक करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा। वजारत खारजा ने कहा है कि ये नुमाइश वाराणसी शहर के लिए वक्फ थी, जिसमें रूहानी सकाफती और रोजमर्रा की जिंदगी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को होने वाला है, और इससे कबल सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने एक महदूद मुद्दत के लिए भारत में टेलीग्राम तक रसाई को महदूद करने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की हिदायत का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि ये बंदिशें नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके अगले रोज तक नाफिज रहेंगी। मस्कूरा प्लेटफॉर्म को ये हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फाल बनाए। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सरकार ने 1945 के अद्वियात से मुतालिक जाब्तों में तरमीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत छोटे गांवों में खांसी की रोकथाम के सिरप की फरोख्त के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। अब छोटे गांवों में भी इस तरह के सिरप की फरोख्त लाइसेंस वाले दवा फरोश ही कर सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने खबरदार किया है कि अगर अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की रुकनियत में तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल मेंबर मुल्कों तक महदूद रखी गई तो सलामती काउंसिल में इस्लाहात की कोशिश

छिन या मैं ना अतामे एटीट्यूड पर दी जोश छ कि यार कोई बात नहीं चंग छ जमीन हां दो जोश ने फैमिली लेवल के दुई छ छिन खुरी लेवल के दुई छ छिन जमीन खुरी लेवल के प्रॉब्लम पर दुई छ छिन जमीन कोई कॉन्फिडेंस पर लो यो चुक पेशेंस लो यो चुक कला से मास कम रियोस एग्जाम चा फेल छि सु या मैं ना कतो जी छ जिस बने कतो इंपल्सिव यो चुक बर्दाश्त कम यो चुक छ ना डे लेवल के को प्रॉब्लम छ छिन जमीन वो भी इन चीज दिस चीज सा

पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर

0: संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुसियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एचआईएफ हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Avignon, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Avignon for the latest updates. Ankit, what significance does this G7 summit hold for India?
2: Yes, Saira, it's really, really significant. The Prime Minister will attend a key G7 working session in some time. The focus of this session is on the forging new partnerships and rebuilding international solidarity. The Prime Minister will be sitting down with G7 leaders, partner nations and top officials from the World Bank and the African Development Bank. See, India's regular presence at this summit is highly significant. India has truly emerged as a major global power. Today, the entire world is looking toward New Delhi for real solution to complex crisis. Saira, if you see, India is now actively setting the global agenda to resolve these problems. This massive shift is a direct result of Prime Minister's strong diplomacy and his excellent personal rapport with world leaders. Saira.
1: Well, thank you so much, Ankit, for that update. Moving on the sidelines of the summit, Prime Minister Modi is scheduled to hold bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and President of the UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later tonight, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. A key engagement during the visit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump tomorrow. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen

0: bilateral cooperation across sectors. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. U.S. allies at the Group of Seven summit of major industrialized nations worked today to push the war in Ukraine back up the agenda of President Donald Trump after more than 4 years of the conflict. Host President Emmanuel Macron of France said he'll seek to persuade Mr. Trump to continue supporting Ukraine and increase pressure on Russia to help reach a peace agreement. As the U.S. under Mr. Trump has cut back aid to France, to Ukraine, France and its European allies are now the biggest providers of military and financial support to Kiev. Ukrainian President Volodymyr Zelensky also joined G7 leaders for a morning working session, but talks wrapped quickly as leaders gathered for just 75 minutes. Back home, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in the context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses, and advanced contingency plans for low-rainfall districts. He gave a clear message that protecting farmers' interests is the government's top priority under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Ahead of the re-examination of National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG 2026, which is scheduled for 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency or NTA has welcomed the decision. In a statement, the NTA said that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. Extending the rally for a third consecutive session, domestic benchmark equity indices ended today's trade with gains of more than 0.5%. Sensex jumped 544 points to close at 76,808, while Nifty rose 135 points to settle at 23,989. And in women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan in their second Pool A match. And that is the end of this news bulletin.
1: Hindi aur angrezi mein khabar mein ab Akashwani Delhi se samat kar rahe the. Media mein par Akashwani करगिल है चंद इतला समाप्त करें। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट द्रास की जानिब से मौसला एक रोजगार इतला के मुताबिक लद्दाख पुलिस डिस्ट्रिक्ट द्रास की जानिब से उनके महकमे में एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस फोर्स की तनख्वाही आसामियों को पुर करने के लिए जिला द्रास से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंद तालीम याफ्ता बे रोजगार मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांगी गई हैं, जिसके लिए उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक पास और उम्र की हद 18 से 28 साल के दरमियान होना लाजमी बताई गई है। जिस्मानी लिहाज से मर्द उम्मीदवार की जिस्म की लंबाई 4 फुट 5 इंच और ख्वातीन उम्मीदवार की जिस्म की लंबाई 5 फुट होना लाजमी बताई गई है। दरख्वास्त फार्म पुलिस स्टेशन दराज से हासिल कर सकते हैं और फार्म मुकम्मल करके अपने असनाद की फोटोकॉपी समेत उनके दफ्तर में जमा करने की आखिरी तारीख 27 जून मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसलात के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस करगिल के दफ्तर से रबता कायम करें। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई करगिल में साल 2026-2028 के लिए मुख्तलिफ ट्रेड्स में 1 साल और 2 साल के लिए दाखिला देना मतलूब है, जिसके लिए जिला करगिल के तालीम याफ्ता में रोजगार मिडिल पास और मैट्रिक पास उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्तें मांगी गई हैं। दरखास्त फार्म उनके वेबसाइट http://isdm.ladakh.gov.in से हासिल कर सकते हैं और उनके दफ्तर में जमा करने की आखिरी तारीख 25 जून 2026 मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसलात के लिए उनके दफ्तर से राबता कायम करें। यह थी दाखिला के हवाले से इतला जो हमें

0: मौसूल हुई थी। आईसी सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करगिल की जानिब से।
1: जंगी बिजनेस उल्लास के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलन लोकल इन या फायुली थोकाइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब लेपी स्कप्स मांगो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिन गिन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजार 8700014242 का।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो।
4: Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
4: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
6: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे।
0: मीडिया में कांचा आकाशवाणी करगिल का नजर खदमत।

0: सब लगाता इंसान चम पम्पा मोमो अच्छे ने आते ने बेमारे मुक्तला अच्छे कोई का फैमिली का बड़ा कुंती का बड़ा काम जो पिला को कुरी सब कुरी कच्चा 5 लाख है लेन जीरो दो लजबत आयुष्मान वो वंदना कार्ड पो
1: बख्शिश जो छन जो ये दिन स्पर निस मोस बा जो चीज रे से ना ता आयुष्मान कार्ड ध्यान ता चंग हल जो मति लदाख से न दो तो फेशे सिमत पेंसु की सु बीपीएल ना सु एपीएल ना जरे जरो यूनिवर्सल

0: Deka mobile number pu verify çeçin, deka OTP olsun. De OTP ama koy dana patient'i ya ne dedi patient'i lan koy relative'si mobile patası de number pu gali bana do kure ka koy ka treatment çıbana koy de mobile pika koy deka message olsun diyor. Koy ka account pana çam çaz ka treatment pain jese ki seizure na 12,000 koy account puchas de rekwa message olsun. Ha kaçı o tu kunti account açate tu confusion du ma bilkul miçar olsun du account na açate mi koy wallet pana açın de card pu use bana ama bana ko pele da lishin use pe sap pu ko peto ta ki kuri chanda na kharcha me chuk ta ki atira momu confusion du khachi admit pas chana achi card pu use bachmen jan aga use ma bana ka to nacha den ikora de pele den wallet pe card pe lishin aga ko use ka to bana kuri chanda na oro po ki ko pele pochmen use ni esa pu ko fayda in jez ben de card pu 5 lakh एक साल पिला चमीन दो हर साल रेन्यू छे जैसे कि दिची कोस 50 साल ला जैसे कि नानी कचे नी रिप्लेसमेंट बचना ला कोस पुक्सपोन इसका चोस्पिन इनते इसके पहला अराउंड 2 लाख खर्चा छका ले दया 2 लाख ते 5 लाख पने मैंने सोचिन अगले साल को दिची 2026 से यान को रेन्यू सो से कोई और मतलब 5 लाख हो जे दे पिला कोस निचे को यहाँ सुखा फैमिली आगा मेंबर का तो पुख मजर मो माया यहाँ का चुक सर्जरी को ने को दो ज्वाइन जे दो ने यहाँ चिचिक माती रे जैसे कि सीए पेशेंट हो कैंसर है कैंसर पेशेंट मोमो दया कर गिला हेरा जला मोमो मतलब कैंसर पेशेंट का चीमा छुपाई बात से कुंती लेवल का इलाज बस से निपासे बेनुक दो माबा का नाम ये नकतोरा है कार के यूज बसे जैसे कि इंजेक्शन सोमाज पर ने तो भी जहाँ अलग अलग इंजेक्शन हो ना पेशेंट्स आ जाए ना इंजेक्शन में महंगा हो मत कच्चे 19,000 20,000 मुइकली तामरों से ना कच्चे 10,000 दे पिला रहा है मैं सब पु कार पे यूज बसे हॉस्पिटल का यूज से डॉक्टर का कंसल्ट लेने आयुष्मान पेम्बोटुक से का इंजेक्शन चुप ना दूं अरे कार्ड पे यूज बसे फायदा लेने चाहिए ये मैं मेसा पु सिक्की में फायदा लेने चाहिए जो है
1: अच्छा ना जो यदि इसमें नखेस्पा बसे मुल्त दिरी आयुष्मान कार्ड पुचीन या ना तां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरे दिरी स्कीम बुखरांग चीन जरे अच्छा ना जो दिए रहे ना यदि इस पर अच्छी मुल्त पे कि दे लाख गाँव है जो गाँव मती जंजोसी कोई का इंजर संग अच्छा ना दिया ना दूसरा फिर तक कि जंजोस पचाम नफर यो मगोशा सिंदरे चंग लिमिटेशन चिक यो तक कि जंजोस चाम यो नयो चाहे न्यूनसिक न्यूक्लियर चियो दिया जॉइंट फैमिली यो ना सारे कोई का चाचा से ना दिया चंग सिसियो तमिल
0: फैमिली मेंबर खर्चे दस जो में खर्चे बीस जो ना लिमिट चिमा हो में ना राशन कार्ड ना चम फैमिली मेंबर का तो ना ते कोई का छचाए बाकी ते गाइडलाइन से सब का या आते दिन से भी का बना मेंशन बस में चीदो लिमिट हो मशीन दस जीरो पांच जीरो ने तो शिचा लिमिट चिमे जो है
1: अल्लाह का गयो दक्षम कुल कुल खून सोसो भी इन छे तहा जो आता सोसो राशन कार्ड लंदन का तो गे अपना तो खुंदा अलग से आयुष्मान कार्ड चाहिए इन चेस इनने
0: बिल क्या आयुष्मान कार्ड एक बार था देखने दोबारा चुआ यंचमिन बाकी तो राशन कार्ड ऐसा भी का अलग स्प्रे को चचाए कोई मी पुलदान होना दे आयुष्मान कार्ड को नने कलेशन दे पिला अगर कोई ने अप्लाई का तो बच्चे ने पहला ते चूस यो कनेसन ला कोन जॉइन पे मिलियन बच्चों से यो कन पु दे कार्ड पु रिजेक्ट पार होशे दे कार्ड पु रिजेक्ट पास हैं दे कन कुरी दास सोमा राशन कार्ड यं कोला अलग मतलब स्प्रे चूस यो ना ते मी का कोस या आयुष्मान कार्ड जो है यं चेंज जो है
1: राशन कार्ड इमान मिंग मजूस पे ऑन द पहले जो राशन कार्ड इमान मिंग पु चुक पे मिंग ना चिबा कोशे जिन्या गाव इस तो ये रस मान लो जो राशन कार्ड पे मान अच्छा अच्छा इंजर आयुष्मान कार्ड फिला चाना राशन कार्ड यं चिक चिमा मिंग बुखरां में खुद दक्षम चुक नुसम ना तो दे फिला यं ता नंबर आप बताबा कोशे जिन्या फूड पान नंबर का चुक्षे दिरी सिस्टम पे जो
0: जैसे कि आते फुसा होने पांच साल एबो छकान से सिक्स सेवन ईयर से नुक दुनिया आता हमारा ने कुंती राशन कार्ड था एल्ड माबा जाक सोन लोग नहीं मैं सब पूर्व तो राशन कार्ड था मैं एल्ड भाषे जब फूने आयुष्मान कार्ड पूर्व वक्त का चौर होशी अगर मैं सुखे राशन कार्ड था का तो मैं मैं ना दो सेक आईडी हो मत राज में 24 डिजिट नंबर ची दो आते हिंदुस्तान है 2011 सेक सेंसेक्स आईडी दे सभी का तो पुराना सूट पिना तो नहीं मिल ची दे सभी का चौंगे बच्चों
1: को ला नाश्तीज मिर्चीज बाकी यों ऐतां को आयें तेरे दमो बसे रिस्पांस तां से सेंसेस यानो यंती मिमों जुक शुक्चेस ता इनकी देना सेंसेस इस्ट्रोलिका यों चेस चनी तो सुना गति लोक्सो स्कीम उन इन बजट थर्मा निफिलावे वंदना कार्ड जे सुनचे प्रुनिया तामा निके चौंगे चेस इंजेस देना तो सुना गति मिमां सुना नहा जुगति आर्मी पर्सनल लो तां को देना आयुष्मान कार्ड पुचो इंगेंचेस इना की कोई फ्लायंग सोसो कार्ड चेत चेत देश को लची मुन्ना

0: आंधियां चली और निकल गई, सैलाब आए और गुजर गए, मगर हुसैन की याद जिंदा रही और आज भी जिंदा है। मालूम होता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम और इनके काम ने नूह इंसानी के दिल में घर कर लिया है। लब पर हुसैन का नाम, दिल में हुसैन की याद और दिमाग को हुसैनी मकसद की तलाश है, शख्स और जाती मकसद नहीं। अगर ऐसा होता तो किसी को क्या पड़ी थी कि जिंदगी इसकी याद में सरफ करे।
1: किसी मुसीबत के सताए को देखकर निगाह मुड़ जाना, ये दिल में हमदर्दी सी कसक पैदा होना, बिल्कुल एक वक्ती चीज है, मगर इससे कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं मिल सकती। हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद नूह इंसानी से वाबस्ता था और इज्तिमाई हैसियत रखता था, इसलिए इंसानियत ने अपना दिल चीर कर इसकी याद को महफूज कर लिया। किसी के दिल में इतनी ताकत है कि वो आज मक्तले करबला की सैर करे। एक दिल उलझाने वाली खामोशी, एक दम गठाने वाली उदासी, वो काफिला जो दूसरी महरम को इस सरजमीन पर उतरा था, आज अपना असबाब बांध कर चला जा चुका है। इसलिए सन्नाटा छाया हुआ है, यकीनन ये मंजर दिल हिला देने वाला है। मगर इंसान भी अजीब चीज है, वो हर नए हादसे की कैफियतें देखने की ख्वाहिशमंद होता है। करबला में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अगरचि दसवीं को चांद निकलता है, मगर अरब के पुरगर्द गुबार रेगिस्तान का चांद भी अंधेरे की एक निकाब अपने चेहरे पर डालकर निकलता है। जब चांद का यह आलम हो तो तारों का पूछना ही क्या।
0: रात तो अंधेरी होती है, मगर इंसानियत की आंखों में जैसा अंधेरा दसवीं महरम की रात था, वैसा कभी नहीं हुआ। जब करबला में नाम के मुसलमान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर उजाड़ने की तैयारियां कर रहे थे, चांद की सफेद रोशनी पर गहन लगा हुआ था। यजीदी फौज के दिल व दिमाग पर तारिकी छाई हुई थी, इसलिए कि वो जानबूझकर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेगुनाह फर्जन को कत्ल करने जा रहे थे, और हुसैनी जमात में माओं, बहनों और बेटियों की आंखों में दुनिया तारीख थी कि इनके बेटे बाप और भाई बस एक इशारे के मेहमान हैं।
1: बच्चियों की आंखों के सामने प्यास की शिद्दत से धुआं छाया हुआ था, और रात के सन्नाटे में नहर फरात के बहने की आवाज जो ऐसा महसूस होता था कि बहुत करीब से आ रही है, इनकी प्यास में मजीद इजाफा कर रही थी। इन तमाम तारीकियों में बस अगर शे बड़ी रोशन और ताबनाक थी तो वो शहीदों का मुस्तकबिल और हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा, जो उस तमाम जाहिरी गम व हसरत व यास व हुरमान के हुजूम में भी मुतमईन नजर आ रहा था। करबला में बेशुमार खेमों और झुलदारियों का सिलसिला, जिनमें अक्सर चराग रोशन हैं, और बहुत से खेमों की झुरमट में एक बड़ा खेमा जिसमें तेज रोशनी है। जरूर ये रोशनी हमारे निगाह को सबसे पहले जज़्ब करेगी। ये यजीदी फौज के सालार उमर साद का खेमा है, जहां उस वक्त फतह की खुशियां मनाई जा रही है।
0: अगर चीज सैकड़ों खेमों से इस वक्त जख्मों की कराह की

0: वफादार अब्बास की ये यादगार कामयाबी थी कि वो फौज का पहरा हटाकर मशक में पानी भर लेने में कामयाब हुए, मगर अफसोस की भरी हुई मशक को लेकर खेमे तक पहुंचाना मुमकिन न हुआ। तीर ने मशक को छेद कर पानी बहाया और अब्बास ने सैकड़ों जख्म खाकर अपने जिस्म का तमाम खून बहा दिया। आज हजारों अलम इसी एक अलम की याद में हजारों कांधों पर उठ रहे हैं और हर ताजिया खाना में हुसैन के नाम की जरीह तो एक होती है मगर अलम कसरत के साथ नसब होते हैं। ये इशारा है इसका कि अब्बास अलैहिस्सलाम तो दुनिया में न रहे मगर इनका अलम आज तक ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा, क्योंकि हक का झंडा कभी भी सरनगू नहीं होता। ये मंजर यकीनी अगर एक तरफ दिल में जोश वलवला और हक पर मिटने का हौसला पैदा करता है और रगों में खून की रवानी बढ़ाता है,
1: तो दूसरी तरफ एक ऐसे बहादुर की लाश का जहां फरसा आलम दिल की रगें भी तोड़ने लगता है, बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी होते हैं, वो आंसू बुजदिली नहीं बल्कि बहादुरी की कदर व कीमत के एहसास का नतीजा है और अज़्म मोहम्मद की आग को अफसरदा नहीं बल्कि इसकी शोला अफरोजी में इजाफा करते हैं। यहाँ कोई एक मरका नहीं है जो तवज्जह का मरकज बन सके, बल्कि सचमुच मख्तले करबला तो यही जगह है।
2: ये खाक करबला है जबी रखो इस पर, ये खाक करबला है जबी रखो इस पर, गले कटाए गए हैं यहाँ अजां के लिए।
1: दूर तक लहू का छिड़काव है, जहाँ बजा खून के थाले बंध गए हैं, टूटे हुए नेजे शिकस्ता तलवारें कटे हुए नेजों के अनबार हैं जो इधर उधर लगे हुए हैं, दुश्मनों के सर हजारों की तादाद में जमीन पर बिखरे हुए हैं और लाशें भी बहुत दूर तक नजर आते हैं। इन सब के बीच 72 नूरानी मुजस्मे खाक व खून में आलूदा इस आलम में हैं। किसी का जिस्म तीरों से छलनी है, किसी का सर नेजों से शिगाफ्ता, किसी का पहलू खंजर से चाक और किसी का सीना नेजे से फगार है।
0: हाशमी खानदान के जवानों बल्कि बच्चों तक की सचदच सबसे अलग है। इनमें एक चांद का टुकड़ा तलवार का फल खाए इस शान से पड़ा है कि अमामा खून से रंगीन होकर लटक आए हैं और इस हसीन चेहरे पर सहरे की तरह छा गए हैं। हाथों में खून की मेहंदी और सीने पर जख्मों की बदी है। यह है हसन अलैहिस्सलाम का यतीम और हुसैन अलैहिस्सलाम का अजीज भतीजा कासिम, जिसे रुख्सत करते वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने मरहूम बाई की वसीयत को पूरा करते हुए अपना दामाद बना लिया था।

इन्हीं के पास 18 बरस कड़ेल जवां का लाशा है, जिसके सहरे के फूल खिलने की नौबत ना आई। ये अली अकबर अलैहिस्सलाम है, जिन्हें हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए बहुत अजीज रखते थे कि वो हूबहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे। इनके रुख्सत होते वक़्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक को गवाह करके कहा था कि जब हम ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्ताक होते थे तो इसके चेहरे को देख लेते थे। आज के खुश अकीदा मुसलमान शबीह नाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो कागज़ पर बनी हो इज्जत करते हैं, मगर अफसोस वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती हुई शबीह का ख्याल न किया। वो हुसैन अलैहिस्सलाम और मुकद्दस जिस्म तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए।

0: सबसे आखिर में निगाह शब की तरफ जाती है और वहीं ठहर जाती है। यहाँ एक तकद्दस का माह पेकर नूरानी शाओं का खजाना खूनैन शफक के अंदर चमकता हुआ सूरज एक हमातन जराहत लाशा ऐसा पड़ा है जिसका सर पहले जुदा हो चुका। इसलिए सूरत से तो पहचाना नहीं जा सकता, मगर जख्मों की कसरत बतलाती है कि तमाम हरबों का असली मकसद और अदावतों का आखिरी मरकज यही था। शिकस्ता कमर जाहिर करती है कि ये वो है जिसका बराबर का भाई मार डाला गया। बाजू तीर से छेदा हुआ खबर देता है कि वो है जिसके हाथों पर 6 महीने का बच्चा निशाना तीर सितम हुआ।
1: खून से रंगी हाथ बता देते हैं कि वो है जिसने बेशीर का खून चेहरे पर मल लिया था। सीने पर कुशादा घाव और पुश्त के पार इसका निशान बतला रहा है कि वो है जिसके सीने पर तीर पड़ा तो सामने से निकल न सका। आखिर पुश्त की जानिब से उसे खींचा और सीने खून से नाले की जारी हुआ। जिस्म के पारा पारा टुकड़े इसकी दलील है कि वो है जिसका जिस्म बाद शहादत घोड़ों के सिमू से पामाल किया गया।

0: तरह यात्रियों का खैर मकदम करते हैं और उनकी सहूलत के लिए भरपूर ताउन फराहम करते हैं। यही जज्बा कश्मीर की असल पहचान है, जहां मुख्तलिफ अकायद और सकाफतों के लोग एक दूसरे के मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए बाहमी एतमाद और अखोवत की मिसाल कायम करते हैं। यात्रा के दौरान मकामी आबादी की शिरकत और ताउन इस हकीकत को मजीद मजबूत बनाता है कि जम्मू कश्मीर की सरजमी अमन, मोहब्बत और हम आहंगी के पैगाम की अमीन है। आज के दौर में जब दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में नफरत, तकसीम और अदम बर्दाश्त के रुझान तशवीश का बाइस बन रहे हैं, ऐसे मौके बैनुल मजाहिब एहतराम और कौमी यकजहती के फरोग के लिए गैर मामूली अहमियत रखते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हमें ये पैगाम देती है कि मजहबी अकीदत और इंसानी अखोवत एक दूसरे की तकमील है। बेहतर इंतजाम, मजबूत सिक्योरिटी, रफाही खिदमात और मकामी आबादी के ताउन से ये यात्रा न सिर्फ कामयाबी से हमकिनार हो सकती है बल्कि अमन, इस्तेहकाम, माशी तरक्की और कौमी हम आहंगी की एक ताकतवर अलामत भी बन सकती है। यही वो मुसबत रूह है जो जम्मू कश्मीर को उम्मीद, भाईचारे और मुश्तरका इंसानी अकदार का रोशन इस्तियारा बनाती है। तबसिरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। समाप्त करें प्रोग्राम वादी की आवाज इस वक्त के बाद।
2: उर्दू में खबरें और तबसरा अब आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे थे। मीडियम में पर आकाशवाणी करगिल है, शाम के 8 बजे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए

जय हिंद। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाई और दोस्तों की खिदमत में हमारा प्यार भरा आदाब। फौजी भाइयों का आज हम चंद नाते कवाले सुनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले पेश है मारूफ शायर का कलाम, आवाज़ है कारी वाहिद जफर कासमी की।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें india post.gov.

0: خبروں کا خدا چاہتے ہیں اب ہم آکاشوانی دہلی سے ہندی انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کریں
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुवाई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की 0 सहिष्णुता नीति की।

0: वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

0: tomorrow, and Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वो आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आज़म नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। भारत और जापान ने जहरीली गैस के अखराज में कमी करने और पायदार तरक्याती इकदामात से मुतालिक तआवुन को फरोग देने की गरज से पेरिस मुआहदे के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म के लिए निफाज के जाब्ते को अपनाया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लिबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। IMD ने शुमाली भारत में कल के लिए बिजली चमकने और तुंद हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। और फेंसिंग यानी शमशेर जनी की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एविया में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था नई शराकत दारियां और बैनुल अक्वामी इस्तेहकाम की तामीर नौ का फरोग। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकतदार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से वजीर आजम मोदी और शरीक होने वाले दीगर लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत और इंसानों की फलाह को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अंकित कुमार, जो वजीर आजम के G7 के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके हमराह गए हुए हैं, ने ताजा तरीन सूरत हाल से वाकिफ कराने की गरज से एविया से ये रिपोर्ट भेजी है।
2: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
1: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो अहम आलमी मामलात पर दुनिया के लीडरों के साथ बातचीत और तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत एक ज्यादा पायदार और खुशहाल कुर्राए अर्ज की जानिब इज्तिमाई कोशिशों में पेशरफ के तहीं पुरअज़्म रहेगा। समिट से अलग वजीर आजम कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी, इंग्लैंड के वजीर आजम केयर स्टार्मर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। आज शाम देर गए वो सदर मैक्रों की जानिब से मुनक़िदा एक शानदार इशाइये में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान एक और अहम बात वजीर आजम मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल होने वाली मुलाकात है। दोनों लीडरों के मुतालिक तवक्को है कि वो कई शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के तरीके कार पर तबादला ख्याल करेंगे, साथ ही बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अहम वाकयात पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम मोदी कल शाम पेरिस पहुंचेंगे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज फ्रांस के नीस मैसेना में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

0: फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे में इसराइल को लबनान से अपनी फौजें भी वापस बुलानी होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरें नंतर आकाशवाणी देखले करना स्नाबिन उत्पिन मीडियो में कदियो आकाशवाणी करगिल ने वक्सपो सना बजारगुन मिनट सुमचे सुनसुक नील मजद शेना प्रोग्राम पुनर प्रोग्रामा सिर्तलां से प्रोचुकन पुन मुख्तार जाहिद बड़गामी